सच शाह अडोला सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुदनो तोले पन्नन करण समर्थ है ओपत सब पर लै करण कारण समर्थ है घट घट सब बोले रिजक समाहे सब सह क्या मानस डोले गहर गंभीर अथा तू गुण ज्ञान अमोला।

शब्द बिन कबहू न छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हौ ममता कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपहो रस रसना इन विद तार तू तारी। बहरे करन अकल पई होची शब्द सहज नहीं बूझया। जन्म पदार्थ मन मुख हारिया।

बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरे। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अत भ्रमण करे। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन

पत खोई बहले पेख पवह दिन राती हों मैं रोग न जाई पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है मिल माया सुरत गवाई सतगुर सेव है।

जाने। दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किसु ना जाने, शब्दे मेल मिलाया रहाउ। आन दिन भगत करह दिन राती, दुविधा शब्दे खोई, सदा निर्मल है जो सच राते, सच बसिया मन सोई। मूर्ख दुविधा पढ़ है मूल।

जिसका तुम हर राख्या पावे तिसके नेड़े कोई ना जावे। तू जल थल महियल सब तें भरपूर, तू जल थल महियल।

मस्तक भाग होवै जिस लिखिया सो गुरमत हिरदय हर नाम संहार मधुसूदन जपिया उरतार देही नगर तस्कर पंच धातु गुर शब्दी हर का ढे मार रहा।

तिन मत ऊतम तिन पत ऊतम जिन हृदय वसया बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर

नहीं रहाओ। गुरसिख हर बोलो हर गावो, ले गुरमत हर जपने, जो उपदेश सुने गुर के रा, सो जन पावे हर सुख घणे।

भाव, तप्त बुझी पूर्ण सवे आसा, मिटे अंधेर पहे प्रगासा, अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुर पूरा पूरा प्रसाद, जहाँ कौ प्रगट पहे गोपाल, ताँ कै दर्शन सदा निहाल।

हम मूड मुगद किश बूझ है नाही, तू आपे देह बुझाई, जो तुद पहावे सोई करसी, अवर ना करना जाई।

सुन सहज महे बुनत हमारी, हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो रहा।

गुरमत खोज परे तब पकरे तनसाव तरास उबरया। पाखंड परम उपाव कर थाके हृदय अंतर माया माया साधु पुरख।

ओडा कूप गोज खिन काढ़ै, जो ओडा कूप गोज खिन काढ़ै त्यों सतगुर वस्त लहाइय। जिने ऐसा सतगुर साध ना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाइय। जन्म पदार्थ

है समाहे ज्यों पावे त्यों रास ले सुख नानक पूरा गुर मिले। बसंत महला पंजमा।

पै बिन से निरपै पद पाया, गुर मिल नानक खसम त्याया, साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल महियल रब रहया, गुर मिल नानक हर हर कहया। अष्ट सिद्ध नव निद ए, कर्म प्राप्त जिस नाम दे, प्रभ जप जप जीव है तेरे दास, गुर मिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवा, घर पहला, एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद।

संग सहेरी प्रिया बचन उपहास कहो जौ सुरजन ग्रह पीतर आयो तब मुख काज लजो।

निसबासर नखयत्र बिनासी रव ससियर बेनाधा गिर बसधा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलाधा एक साध बचन अटलाधा।

तिस अर्पौ सब सुख जाई, एक निमुख प्रैदर्स दिखावे तिस संतन कै बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती, सेवों दिन रह नाई, मान अभिमान हों सगल त्यागों, जो प्रै बात सुनाई। देख चरित्र पई हों बिस्मन गुर।

रहाओ। चरण कमल बसाए हृदय एक स्यों लिवलाओ। साध संगत हो हे निर्मल बहुर जोन ना आओ। जियो प्राण आधार तेरा तू निठावे ठाओ। सास सास संभा

ताज अभिमहान शरण संतन गहो मुक्त हो है शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही जन नानक।

अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार भरे नाहीं चित डोले मन ही ते मन मानिया।

नौ तन प्रीत सदा ठाकुर सियों, आन दिन भगत सुहावी, मुक्त भय गुरदर्श दिखाया, जोग जोग

तीर्थ अड़सठ मज्जन नाई सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्म

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर भौजल जगत तरावै रहाउ। जो गुर कहो जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै। परम भूले अज्ञानी अंधले,

दिवसै हौ तिनकै सद बलजांत। ज्ञानी हर बोलहु दिन रात, तिनकी तृष्णा भूख सब उत्तरी, जो गुरमत राम रस खांत रहाव। हर के दास साध सखा जन, जिन मिलिया लह जाए प्रांत। ज्यों जल दुध पिन पिन काढ़ै

अनकबार ब्रह्म है बहुजोनी, एक न काहूं धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन पौ चितवत, मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंघ है कत सागर, कागर नाव लंघ है कत सागर, वृथा कथत हम तरते। शिव विरंच असुर सुर जेते, काल

कान हर बरस सगल जग छाया, पय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहा। मिटे क्लेश तृष्ण सब बूझी,

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो। जो जो भगत होए सो पूजहो परमन परम चुकावे गो। जात न जात देख मत परम हो सुख जनक।

था। भगत सरोवर उछले सुपार भरे बहन, जिन्ना सतगुर मन्या जन नानक वड भाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असं

फिर शाहा वड पुरख स्वामी रहाओ छल नागन स्यो मेरी टूटन होई गुर कहया एह झूठी तोही मुख मीठी खाई कौराए अमृत नाम मन रहया अगहाए।

अर्थ कह साध संग स्नेह सत्यं सुख्यं बसंत नान कह मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं

उरतहारं कुल है समूह सगल उदहारं बड भागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूह नह।

बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पहावै देहो दर्श मन चाओ भगत इहो मन ठहरावै बलियो चिराग अंध्यार मह सब कल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सब

पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहो अगम अपार हो श्री पतनाथ शरण नानक जन श्री पतनाथ।

मुन जन गावे है अचल छला गावे गुण तोम अटल मंडल वे भगत पाए रस जाने ओ कब कल सुजा

तैं अटल अमर पद पायो। संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै, मिलत शांत उपजै दुरत दूरंतर नासै। सुख सागर पायो दिन तहर।

शब्द गुर श्रवण है सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पण्यो, लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद।

पुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस तेह नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।

संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। फुन गुरु जल बिमल अथा मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। सदा निर्वैर निरंकार निरभौ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन भ्रमत जहो नाम

भुयंगम सर्प है जग केरिया बिखमाए, बिख का मारन हर नाम है गुरगर्ड शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए, मेरे सतगुर निर्मल हो।

हर का नाव अत बड ऊंचा, ऊंची हूँ ऊंचा होई। अपड़ कोई ना सकई जे सौ लोचै कोई। मुख संजम हच्छा ना हो वई,

जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी।

गुरमुख वेदं गुरमुख रया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक देव जाई सबना जिया का।

कीता अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई न सुजई जे तित गुण कोई करे। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरप तवले आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह न सके काल। नानक भगता सदा विदास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनिए मुख सलाहन मंद, सुनिए जोग जुगत तन पेद, सुनिए शास्त्र सिमरत वेद। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए सत संतोष ज्ञान, सुनिए अथट का स्नान, सुनिए पड़ पड़ पावे मान, सुनिए लागे सहित्यान। नानक भगता सदा विगास।

जी जात रंगा के नाव सब ना लिखिया बुरी कलाम यो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तां सवाल्यो रूप केती दात जाने कौन कूट कीता पसाओ एको कवाओ सिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कौन का विचार वारिया ना जावा एक वार जो तू दुबा वैसा ही पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख बाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े यार कूड़े फिराहे असंख मलेच मल पख खाहे असंख निंदक सिर करें पार नानक नीच कहे विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख ठाव

अगम अगम असंख लो, असंख कहें सिर पार होए। अखरी नाम अखरी सालाहा, अखरी ज्ञान गीत गुणगाहा। अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण। जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जिस फुरमाए तिव तिव पाए। जे ता कीता ते तानाओ, विण नावे नाही कोथाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। पर ये हाथ पैर तन देहे, पानी तो तै उतरसते। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लईए ओ तोए। पर ये मत पापा के संग, ओ तो पै नावे के रंग। पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख ले जाओ। आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावे तिलका मान। सुनिया मनिया मन कीता भाओ, अंतरगत तीरथ मलनाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आस बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सो वेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार। कवन सिरुति महा कवन, जित हो आकार। वेल न पाया पंडती, जे हो लेख पुराण। वक्त न पायो काजिया, जे लिखन लेख पुराण। सित वार न जोगी जाने, रुत मह न कोई। जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना। नानक आखन

नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन इकवात सैस अठारह कहन कतेबा अपनू इक तात लेखा होए ता लिखी है लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप। साला ही साला है एती सुरत न पाया नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद ना जानिए समुंद सहा सुल्तान गिरहा से ती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिकती कहन न अंत अंत ना करने देन ना अंत अंत ना देखन सुनन ना अंत अंत ना जापे क्या मन मंत अंत ना जापे कीता आकार अंत ना जापे पारावार अंत कारण के ते बिललाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो।

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना समाए केते मंगे जोद

रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांसी कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता अपना जीव तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह सा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंडा संतोख सरम पत चोली ध्यान की करें विपूत खिंथा काल पुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कटवा जैनाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दो कार चलावे लेखे आवे पाग आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवें चिलावे जिव होवे फुरमान ओ वेखे ओ ना नदर ना आवे बहुताए हो विडान आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बो लख होवे लखवीस लख लख गेड़ा आछिए एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िए होए इक्कीस हूं गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखन जोर चुपैने जोर जोर न मंगन देन न जोर जोर न जीवन मरन नह जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटे संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवे निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जा पै जाए तर्म खंड का एहो तर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे कार्त करिए रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मुन केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पाप नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत नांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथे कारत करिए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे करिए सुरत मत मन बुद्ध तिथे करिए सुरा सिदा की सुद कर्म

आके रूप ना कथने जाए ना ओहे मरे ना ठागे जाए जिनके राम वसै मन माहे तिथे भगत वसै के लो करें आनंद सच्चा मन सोए सत खंड वसै निरंकार कर कर वेखे नजर निहाल तिथे खंड मंडल वर पांड जे को कथे।

नानक कथना करड़ा सार, जट पहाड़ा तीर सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत चितताल, करिए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पावन गुरु पानी पिता, माता तरस महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगी आईया बुरी आईया।

है भी होती जाए न जाती, रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाई कर कर देखे कीता अपना, ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष भावे सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई तो पाताओ सापत साहिब, नानक रहन जाई आसा महला पहला। सुन वड्डा आखे सब कोए, केवट वड्डा दिशा होए, कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए, वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवट चीरा रहा, सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह ना जाई तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड़ियाईया, तुदवे सिद्धि किने न पाया, कर्म मिले ना ही ठाक रहाया, आखन वाला क्या विचारा, सिफती परे तेरे पंडारा, जिस तू दे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारन हारा, आसा मेला पहला। आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखन औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागे पूख, उत पूख है खाए चलिए दुख, तो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए राव, साचे नाम की तिलवट आई, आख सके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलके आखन पाए, वदा न हो वे काट न जाए,

अवर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, चित सरवर लै पहिले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतक मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हूं जति पति नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिनको नाही विसरिया, आशा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे कित न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, संग जाम लागे पव जल करन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के, रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हमनी।

नित नित जियड़े संभालियन, देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार। संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, देवो सज्जन।

सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, आउद कटे दिन सुरैनारे, मन गुर मिल काज सवारे रहाओ, ए संसार विकार संसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी, जा को आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मने बसेरा, निज कर महल पाओ सुख सहजे, बहुर न होए गो फेरा, अंतर जामी पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे, नानक दास यह

रंग पसाओ मत देख पूला विसरे तेरा चित ना आवे ना सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसरे तेरा चित ना आवे ना सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पूला।

चंद सूरज दोई गुफे न देखा, सुपने सौन न खाओ, पी तेरी कीमत ना पवे, हौ केवड आखा नाओ। साचा निरंकार निज काए, सुन सुन आखन आखना, जे पावे करे तमाए, रहाओ कुसा कटिया।

लेखे बोलन बोलना, लेखे खाना खाओ, लेखे वाट चलाया, लेखे सुन वे खाओ, लेखे साल वाई है, पढ़े के पुछन जाओ, बाबा माया।

रोवन वाले जेतड़े सब बन्ने पंड पराल, सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए, कीमत किने न पाया कहन ना वड्डा होए, साचा साहिब एक तू होर जिया के तेलो। नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्या स्यों क्या रीस, जिथे नीच समालियन तिथे नदर तेरी बख्शीस। श्री राज मैला कैला लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुर्दार, पर निंदा परमल मुख सुदी अगन क्रोध चंडाल, रस तस आप सलाहना एक कर्म मेरे करतार, बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए, नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामण।

कह कछ नाम निवास, जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान, फिका बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान, जो तिस पावे से पले होर के कहन वखान, तिन मत तिन पत तिन तन पल्ले।

तामन खीवा जानिए जा मैली पाए थाओ नाओ नीर चंगे आया सत परमल तनवास ता मुख हो वै उजला लख दासी इक दात दुख तिसे पै

आस अफर तीरथ का मुख टिक्का तित कप मत विगास ओत मत्ती सालाहना सच नाम गुणतास।

सच मिले सच उपजे सच में साथ समाए सुरत होवे पत उगवे गुरु बचनी पौ खाए नानक।

ताप मिले पुन ताप कहो सुस्ती सुप्त समाए। लाल गुलाल जन बरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच मिले संतोषिया हर जप के।

विचार गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार तिद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए निज कर मैल पछानिए नदर करे मल तोए।

कर्म मिले सच पाए, गुरुमुख सदा निरोध सच्ची कार है सच मिले, गुरमत पल्ले पाए सो नर जमे ना मरे, ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दर्दे पैदा जाए। श्री राग महला पहला। तन जल बल माटी भया मन माया मोह मनूर,

निर्मल मैला ना सिया शब्द रते पत होए। ए मन साथ संतोखिया नदर करे तिस माहे

ओ वे परवाह अतोलवा गुरमत कीमत सार लख सियाणप जे करे लक्ष्यो प्रीत मिलाप बिन संगत साधना प्रापिया बिन नावे दुख संताप।

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन रात गुरमुख हर तन जान।

विसरै रोग वड्डा मन माहे क्यों दरगे पत पाई है जहाँ हर नवसे मन माहे गुर मिले सुख पाई है अगन मरे गुण माहे मन रे एनस हर गुण सार जिन खिन पल

sopra o sed patar. चारे अग्न निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगाशया अमृत पया अघाए नानक सतगुर मीत कर सच पावे दरगह जाए श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवती।

गुरुमुख कूड न पावै, सच रत्ते सच भाए, साकत सच न भावै, कूड़े कूड़ी पाए, सच रत्ते गुर मेले है, सच्चे सच समाए, मन में मानक लाल नाम, रतन पदार्थ हीर, सच वखर तन नाम है, कट कट गहर गंभीर, नानक गुरमुख पाई है, दया करे हर हीर, श्री राग महला पहला, परने पाए ना विजवै, जे पवै दिसंतर देश, अंतर मैल ना

मिल सत्संगत हर पाए, गुरमुख हर निविलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलले सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो, सो अवगुण आवे जाए, जिस सतगुर पुरख न पेत्यो, सो पाव जल पचे पचाए। ए मान के जियो निर्मोल है, क्यों कौडी बदले जाए। जिना सतगुर रस

तैसी वस्त्र विसाहिए जैसी निभ है नाल अग्गे साओ सुजान है लैसी वस्त्र समाल पाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर

जिस कोय खोते खोट कमावना आए गया पत खोए। नानक मन समझाई है गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रखिया।

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंझ में आनो आपे वेखे सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस पावे नानका हुक्म सोई परवा।

कर पंजवा। अचल चलाई न चले न काओ कटारा कर सके, जो साहिब राखे क्यों रहे, इस लोभी का जियो टल पले। बिन तेल दीवा क्यों जले, रहाओ पोची पुराण कमाई है, पौ वट्टी इक तन पाई है, सच बूझन आन जलाई।

आए। सतगुर मन कामना तीर्थ है, उसनो दे बुझाए। मन चिंदिया वर पावना, जो इच्छा सो फल पाए। नाउ पियाई।

सो गुरुमुख नाम समाए। पर पर पंगत जोत की वाद करें विचार, मत बुद्ध पवी न बुझई अंतर लोभ विकार। लख 84 परम दे प्रम प्रम होए खुआर।

देखो नदर कर नित वसे परपूर गुरमत जिनी पछाणिया से देखें सदा हदूर जिन गुण तिन सद मन।

आंगन पवित्र रखिया मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंब का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम प्रगास है ओ सदा सदा फिर होए ए जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम न के लिवलाए पग छुए रहना नहीं आगे ठौर न पाए ओ वेला हथ न आवई अंक गया पछताए जिस नदर करे सो उबरे हर सेती लिवलाए देखा देखी सब करे मन मुख बूझ न पाए जिन गुरुमुख हृदय शुद्ध है सेव पई तिन थाए हर गुण गावे हर नित पढ़े हर गुण गाए समाए नानक तिनकी बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिवलाए श्री राग महला तीजा जिन्नी इक मन नाम से आया।

आईरे गुरमुख सदा पत होए, हर हर सदा त्याए मल हों में कदे तोए रहा। मनमुख नाम न जाननी विन नामे पत जाए, शब्दे साधना आयो लागे दूजे पाए। विष्टा के कीड़े पवे विच विष्टा, से विष्टा माहि समाए। तिनका जन्म सफल है जो

गुरमुख नाम से आया विच्चों आप गवाए ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर प्याए श्री राग महला तीजा हर पगता हर तन रास है गुर पूछ करे वापार हर नाम सलाहन सला सदा वखर हर नाम आधार गुरपुरे हर नाम दृढ़।

नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदिन नाम त्याए सहजे नाम समाए। अंदर रचे हर सच सिओ रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे भाए गुर सरनाई सुख लहे। अंदिन नाम त्याए रहाओ साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर त्याए। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे हों मैं तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल न उतरे मर जमे हुए खुआर। तातुर बाजी पलच रहे ना उर्वार न पार। गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है एक

ऐनस भगत करें दिन राती, होमें मार निचिंद वड्डे भाग सत्संगत पाई, हर पाया सहज आनंद सो साधु बैरागी सोई, हृदय नाम वसाए अंतर लाग ना तामस मूले, विच्चों आप गवाए, नाम निधान सतगुरु।

लाग। नानक शब्द रते हर नाम रंगाए, बिन पै के ही लाग। श्री राज महला तीजा, कर ही सौदा पाई है,

गुर प्रसादी मन वसे हौ मैं दूर करे एहो मन तावत तां रहे जा आपे नदर करे। पाई रे गुरमुखर नाम से आए नाम निधान सद मन वसे महली पावे थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरे ज्यों सुन्ये कर काओ गुरमति कट

कर कृपा में लायन हर नाम वस्या मन आए पोते जिन कै पुन है तिन सत्संगत में लाए पाई रे गुरमत साच रहाओ साचो साच कमावना साचे शब्द मिलाओ रहाओ जिन्नी नाम पछाणिया तिन विटो बल जाओ आप छोड़ चरनी लगा चला तिन कै भाए लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिद्दू पाईए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक

अपना धर्म गवावे बूझे नाही अंधन दुख विहानी मन मुख अंध न चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा पजो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसर न जाई रहाओ इहो शरीर माया का पुतला विच हो मैं दुष्टि पाई आवन जाना जम्मन मरना मन मुख पत गवाई सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाई सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छे सो फल पाए जत सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए जो सतगुर की शरणागति हौं तिन कै बल।

पाई रे, गुर बिन भगत न होए, बिन गुर भगत न पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ, लख चौरासी फेर पया कामन दूजे भाए, बिन गुर नींद न आवई दुखी रहन विहाए, बिन शब्द फिर न पाई है, बिरथा जन्म गवाए।

अंत ना पाया जाए, कतनी बदनी ना पाई है, हों मैं विच्चों जाए, सतगुर मिले है, सद पैर चै, आप बसे मन आए, पाई रे गुरमुख बूझे कोए, बिन बूझे कर्म कमावणे,

पूरे सबद समाए, आपे दे ता पाईए, होर करना किछु ना जाए, देवन वाले के हाथ दात है, गुरु द्वारे पाए, जेहा की तुन तेहा हुआ, जेहे कर्म कमाए, जात सत संजम

काया सादे उर तप करे विच्चों हो में न जाए अध्यात्म कर्म जे करे नाम न कभी पाए गुर के शब्द जीवत मरे हर नाम वसे मन आए। सुन मन मेरे पाच सत गुर सरना गुर प्रसादी छुट्टी है बिख पवजल शब्द गुर तरना रहाओ त्रै गुण सभा तात है दूजा पाओ विकार पंडित पढ़े बंधन मोह बाधा ने बूझे बिखिया प्यार सतगुर मिले तृप्ति छूटे चौथे पद मुक्त द्वार गुर ते मार्ग पाई।

पाये हर नामो दे दृढ़ाए, बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए, मन मुख कर्म कमावणे दरगे मिले सजाए, मन रे दूजा पाव चुकाए, अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए, रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे होमे क्रोध निवार, मन निर्मल नाम से आई है ता पाए मोख द्वार, होमे विच जग बिन सदा।

दरबार। सतगुर पुरख ना मन्यो, शब्द ना लगो प्यार, इस्नान दान जेता करें दूजे पाए खुआर। हर जियो अपनी कृपा करें ता लागे नाम प्यार, नानक नाम समा

माया त्यों जाए। मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मोह देसी जाए। सब किछ आपे आप है हौ मैं विच कहन ना जाए। गुर कै शब्द पछाणिए दुख हौ मैं विचों गवाए। सतगुर सेवन अपना हौ तिन कै लागू पाए। नानक दर सच्चै सच्यार है हौ तिन बलिहारे जाओ। श्री राग महला तीजा। जे वेला वक्त विचारिए ता कित वेला पगत।

मन तन शीतल सास्यों सास न बिरथा तोए। मेरे मन हर का नाम ध्याए, साची भगत तांसी है जा हर वसे मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है, सच नाम बीज पा।

नाम ते आये विन कर्मा पाया ना जाए पूरे पाग सत्संगत लहे सतगुर पेटे जिस आए अंदिन नामे रत्या दुख बिखिया विच्चों जाए नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए श्री राग महला तीजा अपना पाओ तिन पायोन जिन गुर का शब्द विचार सत्संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार दुबदा मैल चुकायन हर राखिया उरदार सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार मन मेरे हो मैं मैल पर नाल हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारण हार रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया प्रभ आपे ले मिलाए अंदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुरु बूझ न पाए जिनको पूरब लिखिया सतगुरु पेटिया तिन आए विण नावे सब डुमणी दूजे पाए खुआए।

की वाणी हर पाये हर स्यों रह समाये रहाओ। सच्ची भक्ति मन लाल थिया रत्ता सह सुवाए गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु न जाए। जेवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस गुण गाए गुरमुख एहो रंग पाये जिसनो कृपा करे र जाए। संसार एहो संसार है सुतिया रहन विहाए एक अपने पाने कढ लयन आपे लेन मिलाए। आपे ही आप मन वस्या माया मोह चुकाए आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाए। सबना का दाता एक है पुलिया ले समझाए एक आपे आप खुआयन दूजे छड़ियन लाए। गुरमति हर पाये

अवगुणवंती गुण को नहीं, बैन न मिले हदूर, मनमुख शब्द न जाने, अवगुण सो प्रभ दूर, जिन्नी सच पछाणिया सच रते भरपूर, गुर शब्दी मन वेदिया प्रभ मिलिया आप हदूर। आपे रंगन रंगियोन सबदे लयोन मिलाए, सच्चा रंग ना उतरे जो सच रते लिवलाए, चारे कुंडा पाव थके मन मुख बूझ न पाए, जिस सतगुर मेले सो मिले सच्चे शब्द समाए। मित्र कनेरे कर थकी मेरा दुख काटे कोए, मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए, सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना विछड़े नानक गुरमुख होए।

तिना सुखे सुख विहाए, ज्ञान विहूनी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मती अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

किस दूर, जिन पिर संगे जानिया पिर रावे सदा हदूर। मुंदे तू चल गुर कह पाए, अंदिन रावे फिर अपना सहजे सच समाए। रहाओ शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिगार, हर वर पायन कर अपने गुर कह हेत प्यार। सेज सुहावी हर रंग रवे भगत परे पंडार, सो प्रभ प्रीतम मन वसे जे सबसे दे आधार। फिर सालाहन अपना तिनके हो सद बलिहारे।

गुरुमति नाम सलाही है, दूजा अवर न कोय रहाओ। धर्म राय नो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार। दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपे एक मुरार। तिनकी सेवा धर्म राय करे, तन सवारण हार। मन के विकार मनह तजे, मन चूके मोह अभिमान। आत्म राम पछाणिया, सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाये, मन मुख फिरे दीवान। शब्द ना चीने कथनी बदनी करे, बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है, दूजा अवर ना कोए। ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। नानक नाम समाल तू, जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा। जग हो मैं मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाए। मल हो मैं तोती किवे ना उतरे, जेसो तीर्थ नाए। बहुविध कर्म कमा

गुर शरण आवे ता निर्मल होए, मनमुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए, मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मल हो मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए।

पहला, मैं मन तन बिरहो अत अगला, क्यों प्रीतम मिले कर आए, जा देखा प्रभ अपना, प्रभ देखे दुख जाए, जाए पुछा तिन सजना, प्रभ कित बिद मिले मिलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवरना कोए, हम मूरख मुगत शरणागति, कर कृपा मेले हर सोए। रहाओ सतगुर दाता हर नाम का, प्रभ आप मिलावे सोए, सतगुर हर प्रभ बुझिया, गुर जेवड अवरना कोए, हौ गुर शरणाई टह पवा, कर दया मेले प्रभ सोए।

कूड़ कपट किने न पायो, जो बीजे खावे सोए सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास, प्रभ तुद्दो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो सावास, बिख पौजल डुब दे कड ले, जन नानक की अरदास। श्री राग महला चौथा। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, मैं दसे प्रभ गुणतास, हौं तिस विट्टों चौखनी है, मैं नाम करे परगास। मेरे प्रीतमा हौं जीवा नाम ते आए, बिन नामे जीवन ना थिए, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाए, रहाओ नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवे लग्या, कड रतन देवे प्रगास, तन वड पागिया, जो आए मिले गुर पास। जिना सतगुर पुरख ना पेटेओ, से पागीन बस काल, ओए फिर जोन पवाईए, विच विस्ता कर विकराल, ओना पास दुआस ना पिटिए, जिन अंसर क्रोध चंडाल। सतगुर पुरख अमृत सर, वड पागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुर की लिवलाए। श्री राग महला चौथा। गुण गावा गुण विथरा, गुण बोली मेरी माए, गुरमुख सज्जन गुण कारिया।

गुण गावा तृप्त मन होए, अंतर प्यास हर नाम की, गुर तुस मिलावे सोए रहाओ। मन रंगो वड पागी हो, गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो, हौ सतगुर के बल जाओ, बिन सतगुर हर नाम न लब्बई, लख कोटि कर्म कमाओ। बिन पागा सतगुर नाम मिले, कर बैठिया निकट नित पास, अंतर अज्ञान दुख परम है, विच पड़दा दूर पयास। बिन सतगुर पेटे कंचन नासिए, मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुर बोहित हर नाम है, कित बिद चढ़िया जा।

सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन ना थिए पागहीन बैरोए जो हर प्रभ पाना सोथिया तुर लिखिया ना मिटे कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जलें समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत पला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए ओए वे परवाह ना बोलनी हौ मल मल तो वा तिन पाए पाई रे मिर सज्जन हर गुण सार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डे हौ मैं मार रहाओ गुरुमुखिया सुहागनी तिन दया पई मन आए सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए सेवड पागी वड जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वन तिन सबत है पाग ही नहीं खाए बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिल लाए ओए सतगुर आगे ना निवे ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा। दिन चढ़े फिर आथवे रैन सवाई जाए आव कटे नर न बुझे नित मूसा लाज चुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पचे पचाए पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई न होए रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दर गए मनिए हर आप ले गल लाए गुरमुखानो पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए अनहद तुनी दर वज दे दर सच्चे सोबा पाए जिनी गुरमुख नाम सलाया तिना सब को कहे सवा।

रस भोगें खुशिया करें माने रंग अपार बोध करें फुरमाइसी वरते हुए अपार करता चितना आवई मनमुख अंध गवार मेरे मन सुखदाता हर सोए गुर प्रसादी पाये कर्म प्राप्त होए रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अथाक किसी चित न पावही।

जिसनो तू पति आएदा सोसन तुझे अनित अहंकार करे अहंकारिया व्याप्या मन की मत तिन प्रभ आप पुलाया ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हो मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोए नानक रता रंग हर सब जग में चानन होए श्री राग महला पंजवा मन विलास बहु रंकना दृष्ट पूल खुशिया छत्र तार बादशाहियां विच सहसे परिया पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख विदाते दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थांग सनंतरा तेते पाव आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग हो।

चाक चखाया चौथे पोर पया तद ही चित ना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिसते सोजी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हर अंतर जामी जान। श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसरना जाओ तंदा सब जलाए कै।

जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वह मत मेरे मन एकस्यों चित लाए एकस बिन सब तंद है।

तिन सतगुर चरण गहे। सफल मूरत सफला कड़ी जिस सच्चे नाल प्यार, दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार, बाह पकड़ गुर काढ़े।

तपना आठ पहर प्रभ त्याय तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवर न कोए जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास सुख दाता पै पंजनो।

उपाव स्यान सगल छाड़े गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रव्याप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सहो में ताप नानक कहो गुर पेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का इको रखनहार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार। मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा आराधनित इकस की लिव लाग रहाओ इको पाई मित इक इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनो न विसरे जिन सब किछ वस कीता। कर इको बाहर इको थान थनंतर आप जी जंत सब जिन

जियो पिंड सब तिस्कार, जो तिस पावे सो होए, गुरपूरे पूरा भया, जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा, जिना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजय मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम से आए।

काल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटी है गुरु दर्शन देखने हाल। थान थान अंतर रब रहे आप।

मेरे मन गुर सबदी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए न कोए। रहाओ मन किया इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान अंतर जा।

पाया लाहा लाभ नाम पूरन होए काम। कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ निर्वाण। सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार। हलत पलत मुख उजने।

पूरा सतगुरु जे मिले पाये शब्द निधान, कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान।

आओ वड पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर है सिरसा हां पास साहो चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाओ निमाणया प्रभु मान तू तेरे संग समाओ हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच्यों मरे ना आवे जाए ना वे छोड़िया विछड़े सब में रहा समाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसे कोई रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार बालक बिरद ना जानिए ने चल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाइए निधारा आधार जिस पे खत किल विखिरे मन तन होवे शांत एक मन एक त्याये मन की लाए भरांत गुण निधान नव तन सदा पूरन जाकी दात सदा सदा आराधी है दिन विसरो नहीं रात जिनको पूरब लिखिया तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिय एह जिंद देखे सुने हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद अकिर्त कणा नो पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवा मन तन तन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार सर्व कला कर था पिया अंतर ज्योत अपार सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रख उधार मेरे मन हर बिन अवर न कोय प्रभ शरणाई सदा रहो दुख ना व्यापे कोय रहाओ रतन पदार्थ मान

मनमुख पस न पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर भगती नाम विहुणिया आवे मंजे पूर रात ले हो प्रभु।

कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पाया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर मया। श्री राग महला पंजवा। मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम हृदय न वसई कारज कित न लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी गुरचरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग कारज सब सवारी है।

जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ। ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ, करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ, मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पे प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल, सतगुर के उपदेश है बिनसे सर्व जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार, रहाओ गुण गोविंद नित गाविए अवगुण कट्टन हार, बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार, सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार, तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर, लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर, थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा परपूर, सच पात साही अमर सच सच्चे सच्चा थान, सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान, नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, उद्दम कर हर जापना वड़ पागी तन खाट, संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट, मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू, सब चूके सोग संताप, रहाओ जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल, जल थल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नजर निहाल, मन तन निर्मल होया लागी साच परीत, चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत, रतन जवे हर मान का अमृत हर का नाओ, सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ। श्री राग महला पंजवा, सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ, चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ, साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ, कर कृपा प्रभ पेटिया मरण न आवन जाओ, मेरे मन हर पज सदा एक रंग, कट कट अंतर रव रहा सदा सहाई संग, रहाओ सुखा की मित क्या गणी जा सिमरी गोविंद, जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओह रस जाने जिंद, संता संगत मन वसे प्रभ प्रीतम बख्शिंद, जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरिंद, अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मज्जन स्नान, रसना उचरे गुणवती कोई न पुजे दान, दृष्ट तार मन तन वसे दयाल पुरख मेहरवान, जियो पिंड तन तिसदा हों सदा सदा कुर्बान, मिलिया कदे ना विछड़े जो मेलिया करतार, दासा के बंधन कटिया साचे सिरजनहार, पूला मार्ग पायुन।

रसना सच्चा सिमरिए मन तन निर्मल होए। मात पिता साथ अगले तिस बिन अवर न कोए। मेर करे जे आपनी चसा न विसरे सोए। मन मेरे साचा सेव जिचर सास, बिन सच्चे सब कूड है अंते होए विनाश। रहाओ साहिब मेरा निर्मला तिस बिन रह न जाए। मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए। तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुरु दाता नाम

जांदे बिलम न होवई विण नावे बिस्माद। मेरे मन सतगुर की सेवा लाग, जो दिसे सो विणसना मन की मत त्याग। रहाओ ज्यो कूकर हर काया तावे देह दिस जाए, लोभी जंत ना जानई पख अपख सब खाए। काम क्रोध मद व्यापिया फिर जो नहीं पाए, माया जाल पसारिया पीतर चोग बनाए। तृष्णा पंखी फासिया निक्स ना पाए माए, जिनकी ता तिसे ना जानई फिर आवे जाए। अनक प्रकारी मोहया बहुविध एहो संसार, जिसनो रखे सो रहे समरथ पुरख अपार। हर जन हर लिव उदरे नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा कर दूजा, गोयल आया गोयली क्या तिस डंफ पसार। मोहलत पुन्नी चलना तू संभल कर बार, हर गुण गाओ मना।

बात, क्या तू रत्ता ग्रस्त स्यों सब फुला की बागात, मेरी मेरी क्या करें जिन दिया सो प्रभ लोड, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख चौरासी भरमत्या दुलभ जन्म पाए हुए, नानक नाम संभाल।

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब का हाथ जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई ना पुछे तेरी बात। पेई रड़ै सौ सेव तू सौ रड़ै सुख वस गुरमिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सोहरे वंजना सब मुकलावन हार नानक तन सुहार।

दुख कलेश ना पौ व्यापै, गुरमंत्र हृदय होए। कोट जतना कर रहे गुरबिन तरयो ना कोए, देख दर्शन मन साधार है, पाप सगले जाहे। हौं तिनके बलिहारण है जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसे साच हर का नाओ, सेवड पागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा, संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार। जिन तू साज सवारया हर सिमर होए उधार। जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार। सत संतोख दया कमावे ए करनी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभु निरंकार। जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार, कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा, दुखरित सुकृत मंदे संसार सगलाना, दोहू ते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना, क्या कहो सुनो स्वामी तू वड पुरुष सुजाना। रहाओ मान अभिमान मंदे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संतो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहो कीरत करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। गत अवगत कछ नजर ना आया, संतन की रेण नानक दान पाया। श्री राग महला पंजवा, कर सतवा तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। पूले चूके बालक तू हर पिता माया।

रहाओ। सतगुरु विटों वारिया जिन दिता सचनाओ, अंदिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप, गुर जेवड अवर ना दिसई आठ पहर तिस जाप, नदर करे ता पाई है सच नाम गुणतास, गुर परमेश्वर एक है सब में रहा समाए, जिनको पूरब लिखिया सही नाम ते आए, नान

पाखंड प्रेम ना पाईए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार। रहाओ गुर शब्दी सिगारिया, तन मन फिर कै पास, दोए कर जोर खड़ी तकै।

साची प्रीत ना तुटई साचे मेल मिलाओ। शब्द रती मन वेद्या हो सद बलिहारे जाओ। सा तन रंड ना बैसई जे सतगुरु माए समाए। फिर रिसालू नौतनो साचो मरे न जाए। नित रवै सुहागणी साची नजर जाए। साच तड़ी तन मांडिये कापड़ प्रेम सिगार। चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार। दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार। नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार। शोभा सुरत सुहावणी साचे प्रेम अपार। बिन पिर पुरख न जानी साचे गुर कै हेत प्यार। निस अंधियारी सुतिए क्यों फिर बिन रैन विहाय। अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए। जा तन कंत

त्यों मानसा पवे अचिंता जाल रहाओ। सब जग बादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हौ तिनके बलिहारण दर सच्चे सच्यार, सीचाने ज्यो पंखिया जाली बद्दक हाथ। गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ, बिन नावे चुन सुटिए कोई न संगी साथ।

मुख झूठ है झूठ बोलना क्यों कर सूचा होए। बिन अब शब्द न मांझिए साचे ते सच होए। मुंदे गुणहीनी सुख के है पिर रलिया रस मानसी साच शब्द सुख ने है। रहाओ पिर परदेसी जेसी है तन मांडी चूरे। ज्यो जल छोड़े मछली करण पलाव करे फिर पावे सुख पाई है जा आपे नदर करे। फिर साला ही अपना सखी सहेली नाल तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल। सबत सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल कामन काम ना आवे खोटी अवगणियार। ना सुख पेई है सौरे झूठ जली बेकार आवन।

त्रिभवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाये सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग, पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूगर जाओ। बन में पूली जे फिरा बिन गुर बूझना।

राजन जाने अपना दर कर ठाक न होए, नानक एक और अव रहा दूजा अवर न कोए। श्री राग महला पहला, गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर, निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर, सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर। पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए, निर्मल साचा एक तू होर मैल परी सब जाए। रहाओ हर का मंदर सोह।

पंजना देख निरंजन पाए। गुपत प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए। ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे ले मिलाए। कस कसवटी लाई है परखे हित चित लाए। खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए। आस अंदेसा दूर कर क्यों मल जाए समाए। सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोए। सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए। सुख दुख सम कर जानिए सबद पेद सुख होए। वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास। मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास। सच रते से जिन गए हो सद बलिहारे जास। चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम ना होए। भगती पाए विहूनिया मोह काला पत खोए। जिन्नी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए। आप पछाने कर वसे हों मैं तृष्णा जाए। नानक निर्मल उजले जो राते हरनाए। श्री राग महला पहला। सुन मन पूले बावरे गुर की चरणी लाग। हर जप नाम से आए तू जम डर पे दुख पाग। दुख कणों दोहागनी क्यों थिर रहे सुहाग।

रहाओ। गुरुमत पद सावा तिस तिस के संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवऊ बिन नावे मर जाओ। मैं अंधले नाम ना विसरे टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधुला चेले ना ही ठाओ, बिन सतगुरु नाव ना पाये बिन नावे क्या सुआओ। आए गया पछतावना ज्यो सुन्ने कर काओ, बिन नावे दुख देहोरी ज्यो कलर की पीत। तब लग महल न पाइए जब लग साच न चीत, शब्द रपे कर पाइए निर्बाणी पदनीत। हौ गुर पूछो अपने गुर पुछ कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसे हौ मैं दुख जल जाओ। सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ, शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार। नाम सलाहन सद सदा हर राखे उर्धार, सो क्यों मनो विसारी है सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार, शब्द ही ते पाये हर नामे लगे प्यार। बिन शब्द जग पूला फिरे मर जन्मे वारो वार। सब साला है आपको वढ़ो वडेरी होए, गुर बिन आप ना चीनिए कहे सुने क्या होए। नानक शब्द पछाणिए हो मैं करे न कोए। श्री राग महला पहला। बिन फिर तन सिगारिए जोबन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी बिन फिर बाद सिगार। दुख कणो दोहागणी ना कर सेज पतार, मन रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम ना पाइए शब्द मिले रंग होए। रहाओ गुर सेवा सुख पाइए हर वर सह सिंगार। सच माने फिर सेजड़ी गूड़ा हेत प्यार, गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुणचार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मंथन साच विकसिया कीमत कह न जाए। हर वर कर सुहागणी निर्मल साचे नाए। मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार, इकत तागे रल मिले गल मोतियन का हार। संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार, खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए। शब्द पछाने रव रहे ना तिस काल संताए। साहिब अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए, व्यापारी बन जा रहा।

ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरख हरियावला छाव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार पवजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नावे तन बाद है पूलो मार गयाथ साचो साहिब सेविए गुरमुख अकथो काथ आवे जाए पवाईए पये किरत कमाए पूरब लिखिया क्यों मेटिए लिखिया लेख रजाए बिन हर नाम न छुटिए गुरमुत मिले मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हौं मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभिमान नानक

बिन जल मरण तिने हे। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरमुख अंतर रल रहा, बक्से भगत पनार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर, जैसी मछली नीर, ज्यों अधिको त्यों

हमें मैल न जाए। सो हम आप पछाणिए शब्द तेज पति आए, गुरुमुख आप पछाणिए अवर के करे कराए। मिलिया का क्या मिलिए, शब्द मिले पति आए, मन मत सो जीना पवे बिचर चोटा खाए। नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला, मन मत फुले फुलाइए, फूली थौर न काए, गुरु बिन

जग सद्या लब लोभ अहंकार मोह ठगौली हौ मुई सावर कै संसार मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर न कोए मैं तुझ बिन अवर न पावई तू पावे सुख होए रहाओ नाम सलाही रंग स्यों गुर कै सबद संतोख जोगी सह सोचल सी कूड़ा मोह न वेख वाट वटाणु आया नित चलदा साथ देख आखन आखे केतड़े गुर बिन बूझ न होए नाम वडाई जे मिले सत रपे पत होए जो तुद पावे से पले खोटा करा न कोए गुर शरणाई छुटी है मन खोटी रास अष्ट तात पाप साहती करिए शब्द विदास

जिन तन मन साज सुधारिया तिस सेती निवलाए रहाओ। तन दै संतर होमी है इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंदिन अगन जलाए। हर नामे तुल न पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए, अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत धराए। तन है मंचल गालिए ती मन के रोग न जाए, हर नामे तुल न पुजई सब जिठी ठोक बजाए। कंचन के कोट बत करी।

गुरमुख मोख द्वार सचो ओर है सबको ऊपर सच आचार सबको ऊंचा आखिए नीच ना दिसे कोई इतने पांडे साजे इक चानन के होलोए कर्म मिले सच पाए।

मिले, साधु जने संतोख वसे गुर पाए। अकथ कथा विचारी है जो सतगुर माहि समाए, ई अमृत संतोखिया दरगह पैदा जाए। कट कट वाजे किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए, विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए। नान

ऊंचो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तित पास, गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली तरियास। पाई रे पाउजल बिखम डराओ, पूरा सतगुर रस मिले।

नारी सेज पतार, चोआ चंदन लाइए कापड़ रूप सिगार, केहू खेर लाइए छोड़ चले कारबार, नहर मलूक कहा।

गुरुमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुरु भगत न होए। आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे कोई हर जियो सच्चा सच।

रहाओ। आपे हर जग जीवन दाता, आपे बख्श मिलाए, जी जंत एक आवे चारे, क्या को आप सुनाए, गुरुमुख आपे देव जाए, आपे सेव कराए, देख पुटंब मोह लुभाना, चल दिया नाल ना जाए, सतगुरु सेव गुण निधान पाया।

जग जीवन दाता मन मुखपत गवाई, बिन सतगुरु को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं बसया अंत गया पछताई। तेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, अंग दिन भगत करे दिन राती हों मैं मोह चुकाया, जिस्यों राता तैसो होवे सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाओ लाए गुर शब्दी विचार, सतगुर सेवे सहज उपजे हों मैं तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उद्धार। प्रभु मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन वसे हो मैं दुख सब जाए, सतगुर शब्द सुनाया हो सद बलिहा रह जाऊं। अपने मन चित कहे कहाए दिन गुर आप ना जाए, हर जियो भगत वचल सुख दाता कर कृपा मन वसाई, नानक सोबा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वलियाई। श्री राग महला तीजा, हो मैं कर्म कमाव दे जम दंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे हर सेती लिवलाए, मन रे गुरमुख नाम ते आए तुर पूरब करते लिखिया किना गुरमत नाम समाए, रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई नाम ना लागो पाओ, सुपने सुख ना पावई दुख में सवै समाए, जे हर हर की कह बहुत लोची है किरत नाम ते आ जाए, हर का पाना भगती मनिया से भगत पे दर खाए, गुर शब्द दिलावे रंग स्यों बिन कृपा ले आना जाए, जो सो अमृत नीरी है पी दिख फल लागे ताए, से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुरु नाल प्यार, सतगुरु का पाना

हर का नाम निधान है, जिस अंत ना पारावार, गुरुमुख से ही सो दे जिन कृपा करे करतार। नानक दाता एक है दूजा और न कोए, गुर प्रसादी पाए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी दीर्घ सुहावड़ा।

न जापई ना अमृत फल पाए। गुरुमुख ब्रह्म हरियावला साचे सह सुवाए, साखा तीन निवारिया एक शब्द निर्लाए। अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मन मुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना चाओ, तिन्ना पास न बैठी है ओना कर ना गिराओ। कटिया तै नित जालिए ओना शब्द ना।

हुक्म ना जाने बपुने पूले सिरे गवार मन हट कर्म कमाउंदे नित नित होए कुआर अंतर सांस न आवई ना सच लगे प्यार गुरमुखिया मोह सोने गुर के हेत प्यार सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार आए से परवान।

नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा। गुरुमुख नाम से आये मनमुख बूझ न पाए, गुरुमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही सुख पाये सहजे रह समाए, पाई रे दासन दासा होए। गुरु की सेवा गुरु भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुरु भाए। सदा फिर निचल पाये ना ओ मरे न जाए, शब्द मिली ना बिछड़े फिर कै अंक समाए। हर निर्मल अप उजला बिन गुरु पाया न जाए, पाठ पढ़े ना बुझई तेखी परम पुलाए। गुरुमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए, माया मोह चुकाया गुरुमति सह सुवाए। बिन सौदे जग दुखिया फिरे मन मुखा नो गई खाए। सबदे नाम ते आये सबदे सच समाए, माया पूले सिद फिरे समाज ना लगे सुवाए। पीने लो व्यापत है अधिक रही लपताए, बिन गुरु मुक्त न पाए।

बिन शब्द परम ना चूके ना विच्चों हो मैं जाए, बिन प्रीति भगत ना हो वही, बिन शब्द थाए ना पाए, शब्दे हो मैं मारिए माया का परम जाए, नाम पदार्थ पाए गुरमुख सह सुवाए, बिन गुर गुण ना जापनी, बिन गुण भगत ना होए, भगत वचल हर मन वसिया, सहज मिलिया प्रभ सोए, नानक शब्द हर्षा लाही है करम प्राप्त होए, श्री राग महला की जा। माया मोह मेरे प्रभ कीना, आके परम पुलाए, मन मुख कर्म करे।

दुश्मना साथ दे पज फैले सबो पजे आसरा चुके सब असराओ चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तकीवाओ साहेब निताणिया का तान आए ना जाई फिर सा।

उचरे तपे तपीशर जोगिया तीर्थ गमन करे खट कर्मा के दुगने पूजा करता नाए रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलक सिकदारिया रस ओगन विस्तार बाग सुहावे सोने चले हुक्म अपार रंग तमाशे बहुविधि चाहे लग रहा चितना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाद अचार वंत शोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाया साजन संग परीत लश्कर तर्कस बंद

जम कंकर वस्तरिया। कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, जो जो ओ वधाये त्यों त्यों हर्षों रंग। दोहा श्रेया का खत्म आप।

एक लूक न देवे दर्शा, एक मन ही जाता काट ना सिन ही कहाया, सब कहते हैं पाया जिस मेले सो पगता, सगल उकत उकत।

में सतगुरु बाज न पायो सब सच्ची कर्म कमाए जियो। ओं सतगुरु विट्टो कुमाया जिन परम पुला मार्ग पाया नदर करे जे आपनी आपे लहर लाए जियो। तू सबना माहे समाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरुमुख प्रगट होया जा को जोत करी सरकार जियो। आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की तैग रखिया दोए कर मस्तक तार जियो। सब संजम रहे स्यान पा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोक करे जयकार जियो। मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरज समारिया कंठ लाए कह रखियो न लगे न तकी वाओ जियो। मैं मन तन प्रभु ते आया जिए इच्छेड़ा फल।

सतगुर पुरख मिलाया, तिस जेवड अवर न कोई जियो, रहाओ गोसाई महिंदा इठड़ा, अम अबे खावो मिठड़ा, तैन पाई सब सजना, तुझ जेहा नाही कोई जियो, तेरे हुक्मे सामने आया, मैं सत का हल जो आया, नाव बीजन लगा आस्कर, हर बोल बख्श जमाए जियो, हौ गुर मिल इक पछाणदा, दोया कागले चित न जानदा, हर इक तै काणे लायो ने, ज्यो पावे तिवे निभाए जियो, तुसी पोजो पुंचो पाइयो, गुर दी बाण कवाए तैनाइयो, हौ होआ महा

मन सिंधी सो फल पाएगा सबे काज सवारियन लायन मन की भुख जियो मैं छड़िया सबो तंगड़ा गोसाई सेवी सचड़ा नौ निज नाम निदान हरे मैं पल्ले बद्दा छिक जियो मैं सुखी हूँ सुख पाया गुर अंतर समद वसाया सतगुर पुरख बिखा लिया मस्तक तर के हाँ।

आप पाए जियो। सुन गल्ला गुर कह आया, नाम दान इस नाम दिलाया,

तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा नामर जाद आया।

संतरा बालक बुद्ध अचेत खीर पिए खेला ये वन जा रहा मित्रा मात पिता सुत हेत मात पिता सुत

ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही जन्म मरोगे झूठे। तीरथ वर्त सुच संयम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापे दूजा। तीजे पैरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सर हंस उलखड़े आए जोबन कटे जरुआ जिने बन जा रहा मित्रा आव कटे दिन जाए। अंत काल पछतासी अंगले जा जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया कराया। बुद्ध विसर्जी गई सियानप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा बिद पया तन खीन अखी अंध न दिसई बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने न वैन। अखी अंध जीव रस नाही रहे परातो ताना गुण अंतर नाही।

चोट न खावे ना किस जमन मरना काल जाल जम जोहे न साके पाए भगत पै तरना पग छेती जावे सहल समावे सगले दुख मिटावे कहो नानक प्राणी।

तन चित वै तन संचवै वन जा रया मित्रा हर नामा हर ना समाल हर नामा हर हर कदे ना समाल जे होवे अंत सखाई त्यो तन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई जिसनो कृपा करे गुर मेले सो हर हर नाम समाल।

वो पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा सब चली रहन विहांदी हर सेवो खिन खिन टिल मूल न करे हो जित अस्थिर जुग जुग हो वो हर से ती सद मानो रलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सतगुर स्वामी भेद न जानो जित मिल हर

कर्म कमाने जैसा लिख तुर पाया, मात पिता पाई सुख बनता तिन पीतर प्रभु संजोया। कर्म सो कर्म कराए आपे इस जनते वस किस न

जिन पेवकड़े नाम संभालिया सब सफलो जन्म तिना दा गुरमुख जिना मन जिन पासा टालिया हर संत जना मिल कारज सोया वर पाया पुरख आनंदी हर सब सत मेरे बाबुला हर जन मिल जंज सुहंदी हर प्रभ मेरे बाबुला हर देवो दान में दाजो हर कपड़ो हर शोभा देवो जित सवरे मेरा काजो हर हर पंक्ति काज सुहेला गुर सतगुर दान दिवाया खंडवर पंड हर शोभा होई इहो दान ना रले रलाया और मनमुख दाज जे रख दिखा ले सो कूड़ अहंकार।

से आया। हर पुरुष ना कभी बिन सह जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको, जप हर

मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम समाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर निभे तेरे नाले। संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई न जाए। मन सिंदे से ही फल पावे चरण कमल चितलाए। जल थल पूर रहा बनवारी कट कट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग प्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर दिन झूठ पसारे। मन प्यारिया जी

आठ पहर प्रवजा पै आप जुगादि सेवक स्वामी पगता नाम आधारे नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे मन प्यारे जियो मित्रा हर लगे खेप सवली।

मिले हो आपे ही आप मोहे हो जस नानक आप सुनियो हो संत प्रेम खगौरी पायरी जाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दोख सब जोया भगत लखन कर वस भये मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच्छ पुजाया बहुड़ न माया होया कर गैली ने नानक प्रभ प्यारे संसार सागर नहीं पोया दखना साईं नाम अमो

हर हर उत्तम नाम है जिन श्रेया सब कोई जियो। हर जी सबे प्रतपाल दा कट कट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर न कोए। जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए। मैं हर दिन अवर न कोए। हर गुरसरण आई पाई है मन जारिया मित्रा। वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया नाओ। विच हो मैं कर्म कमाव दे ज्यों वेसुआ पुत ने नाओ। पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाओ। वद पागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया। हर मिलिया हर प्रवनाओ रहाओ। जब लग जोबन सांस है तब लग नाम से आए। चल दिया नाल हर चलसी हर अंते ले छड़ाए। हौ बलिहारी तिन तो जिन हर मन मुठा आए। जिनी हर हर नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए। मन हर हर पीत लगाए वड पागी गुर पाया। गुर सब्जी पार लगाए रहाओ। हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले। हर आपे परम पुलायदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन प्रगास है से विरले के ही के। हौ बलिहारी तिन कौ जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल प्रगासिया मन हर हर उठड़ा है। मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई पज पो। जिंदु सब किलिक दुख पर हरे रहाओ। कट कट मैया मन वसे क्यों पाये कित पत। गुर पूरा सतगुर पेटिये हर आए वसे मन चित। मैं तार नाम आधार है हर नाम में ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम सिराया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुर बचनी हर प्रभ जानिया। सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास। सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वणज वपारिया जिन वखर लगेड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया जिना आप सुखा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिना रह रास रहाओ।

राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै नेचल मत अपार रतन अमोलक पाया गुरखा शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर आकार नानक सच्चे सतगुरु सेवे है सदा सच व्यापार महला तीजा और बिरहा सब तात है जब लग साहिब प्रीत ना होए इहो मन माया मोया वेखण सुनन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजे अंधा क्या करे नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी हर इको करता इक इको दीवान हर हर इक सैदा है अमर इको हर चित तर हर किस बिन कोई नाहे डर परम पौ दूर कर हर किसे नो सालाहे जे तुद रखे बार कर हर जिसनो हुए दयाल।

मन कर मकसूद जे तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा गुरसवा एव ना पाईए ना नेड़े ना दूर नानक सतगुर ता मिले जा मन रहे हदूर। पौड़ी सपत दीप सपत सागरा नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाणा सब तुझे त्यावे जी जंत हर सारग पाणा जो गुरमुख हर आराध दे तिन्हों कुर्बाणा तू आपे आप वरतदा कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा कलो मसाजनी क्या सदाई है हिरदे ही लिख ले हो सदा साहिब कै रंग रहे कबू न टूटसने हो। कलो मसाजनी जायसी लिखिया भी ना ले जाए नानक सह प्रीत।

पौड़ी। शिष्ट उपाई सब तुद आपे रिजक संभाया, एक वल छल करके खाम दे मुंह कूर कुसत तिन्नी ताया। तुद आपे पावे सो करें, तुद ओते कम कोई लाया। इकना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया। हर चेत खाहे तिना सफल है, अचेता हथ तदाया। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाने, माया मोह सुआए। दूजे पाए हर नाम विसारिया, मन मूरख मिले सजाए। जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते, जो देंदा रिजक समाहे। जम का पाथा गलो न कटी है, फिर आवे जाए। मन मुख किछू न सूजे, अंगले पूरब लिखिया कमाए। पूरे पाग सतगुर मिले, सुखदाता नाम वसै मन आए। सुख माने सुख पहनना, सुखे सुख विहाए। नाम सो नाओ मनो ना विसारिये, जित दर सच्चे शोभा पाए। महला तीजा। सतगुर सेव सुख पाया, सच नाम गुण तास। गुरमति आप पछाणिया, राम नाम प्रगास। सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास। जियो पिंड सब तिसका, सिफत करे अरदास। सच्चे सब सलाहना, सुखे सुख निवास। जप तप संजम मने माहे, बिन नावे त्रिग जीवास। गुरमति नाव पाईए, मन मुख मोह विनाश। ज्यो पावे त्यो रास तू, नानक तेरा दास। पौड़ी। सब को तेरा तू सब सदा, तू सब ना रास। सब तुदे पासो मंग दे, नित कर अरदास। जिस तू दे तिस सब किछ, मिले इकना दूर है पास। तुद बाजो थाओ को नाही, जिस पासो मंगिए मन वेखो को निर्जास। सब तुदे नो सलाह दे, दर गुरुमुखा नो प्रगास। श्लोक महला तीजा। पंडित पढ़ पढ़ उच्चा फूकदा, माया मोह प्यार। अंतर ब्रह्म न की नहीं, मन मूरख दावार। दूजे पाए जगत प्रबोध दा, न बुझे विचार। बिरथा जन्म गवाया, मर जमे वारो वार। महला तीजा। जिन्नी सतगुर सेविया, तिन्नी नाव पाया बूझो कर विचार। सदा सांत सुख मन वसे, चूके कूक पुकार। आपे नो आप खाए मन, निर्मल होवे गुर सबदी विचार। नानक सबद रते।

मुक्त है हर जियो हेत प्यार कौड़ी, हर की सेवा सफल है गुरमुख पावे थाए, जिस हर पावे तिस गुर मिले है सो हर नाम ते आए, गुर सब्जी हर पाई है हर पार लगाए, मन हट के न पायो पुछो वेदा जाए, नानक हर की सेवा सो करे जिस लय हर लाए। श्लोक महला तीजा, नानक सो तूरा वरियाम जिन विच्चों दुष्ट अंकरण मारिया, गुरमुख नाम सलाहे जन्म सवारिया, आप होआ सदा मुक्त सब कुल निस्तारिया, सोहन सच द्वार नाम प्यारिया, मन मुख मरे अंकार मरण बिगारिया, सबो वर्ते हुकुम क्या करे विचारिया, आपो दूजे लग खसम विसारिया, नानक बिन नावे सब दुख सुख विसारिया। महला तीजा, गुर पूरे हर नाम दिलाया, तिन विच्चों परम चुकाया, राम नाम हर कीरत गाई कर चावन मद दिखाया, हों में मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया, गुरमति जम जोहे न साके साके नाम समाया, सब आपे आप वर्ते करता जो पावे सो नाई लाया, जन नानक नाम ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया। पौड़ी, जो मिलिया हर दीवान स्यों सो सबनी दीवानी मिलिया, जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखरू, उसके मोह जिथे सब पापी तरिया, उस अंतर नाम निदान है नामो परवरिया, नाव पूजिए नाव मनिए नाए किलविक सब।

पौड़ी। सो ऐसा हर नाम से आये मन मेरे, जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर लय चढ़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी, तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम अराध सबना ते वड्डा, सब नामे अग्गे आन निवाए। श्लोक महला तीजा। वेश करे कुरूप कुलखणी, मन खोटे कूड़ियार। तिर के पाणे ना चले, हुक्म करे गावार। गुर के पाणे जो चले, सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकिए, जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को, सब दे तरे प्यार। बिन नावे किने न पाया, देखो हृदय विचार। नानक सा सुवालियो सुलखणी, जे रावी सिरजनहार। महला तीजा। माया मोह गुवार है, तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मन मुख अज्ञानी महा दुख पाए, दे डुबे हर नाम विसार। पलके उठ बहु कर्म कमावे, दूजे पाए प्यार। सतगुर सेवे अपना, पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावे, सच नाम उरधार। पौड़ी। हर जल तल मैयल भरपूर, दूजा नाहे कोए। हर आप बह करे न्याओ, कुड़ियार सब मार कडोए। सचियारा दे वड्याई, हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करो उस्तत, जिन गरीब अनाथ राख लिए।

आला ही सो प्रभ सदा सदा गुर कै हे प्यार। नानक जिस नजर करे तिस मेल ले साई सुहागण नार। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जा को नजर करे मानस ते देवते पे त्याया नाम हरे। हौ मैं मार मिलायन गुर कै शब्द तरे नानक सहज समायन हर अपनी कृपा करे पौड़ी। हर अपनी भगत कराए वड्याई वे खालियन अपनी आप करे प्रतीत आपे सेव कालियन। हर भगतानो दे आनंद फिर करी बहालियन पापियानो ना दे फिर रहने चुन नरक कोर चालियन।

इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर, देखत ही जमराव हसे, ऐसा तैं जग परम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया। रहाओ कह कबीर छोड़ बिखिया रस, इस संगत ने चो मरना, रमैया जपो प्राणी अनंत जीवन बाणी, इन विद पव सागर तरना, जा तिस पावे ता लागे पाओ, परम पुलावा विचों जाए, उपजै सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे। इत संगत ना ही मरना, हुकम पछाण ता कसमे मिलना, रहाओ दूजा श्री राज त्रिलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा प्राणी, जरा मरण पौ विसर गया, कुटंब देख बिगसे कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा, दूरा आयो हो जमे तना, तिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीतला ले बाहरी बलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए। रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे, प्राणी संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया, बिखम कोर पंख चालना प्राणी, रव सत तहना परवे संग, माया मो तब बिसर गया, जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट भया है, पेखियले तर्म राओ, तह कर दल करन महाबली, तिन आग लड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिन रतड़ा नारायण, ए जी तू आपे सब किछ जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जियो का। अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किछ कह न जाए, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेखली लाए, राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाकी दिस्त नाद लिव लागे। रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश इक पाया, तिस में तार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया, एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा, ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता, और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की, पहरियां कह कर गावना।

रेनार गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा। ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया। फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ। बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रस मिस मेद अमृत बिख चाकी तो पंच प्रगट।

तापे, जप तप संजम छोड़ सुकृत मत, राम नाम ना आराध्या, उछलिया काम काल मत लागी, तो आन सकत गल बांधिया। तरुण तेज परत्रय मुख जो है, सर अफसर ना पछाणिया, उनमत काम महा बिख पूले, पाप पुन ना पछाणिया। सुत संपत देख एओ मन गर्भिया, राम हृदय ते खोया, अवर मर्त माया मन तोले, तो पग मुख जन्म विगोया। कुंडर केस कुसुम ते तौले, सपत पताल की बाणी, लोचन समय बुद्ध बल नाथी, ता काम पवस माधानी। ताते बिखे पई मत पावस, काया कमल कुमलाना, अवगत बाण छोड़ मृत मंडल, तो पाछे पछताना। निकुटी देह देख तुन उपजे, मान करत नहीं बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। थाका तेज उड़िया मन पंखी, कर आंगन ना सुख।

अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जो पे हम ना पाप करंता, अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। रहाओ तुम जो नायक आछो अंतर।

हर हर नाम में हर मन भाया, वडपागी हर नाम से आया, गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया, हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई, हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर ना जाना, कोई सज्जन संत मिले वड पागी, मैं हर तक प्यारा दसे जियो। हों मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई, मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसै जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विकसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगावे, हर हर दया।

चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत्संगत हर गुण गाए जग पौजल दुत्तर तरिए जियो आओ सखी हर मेल करेहा मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई मैं दसे हर नर हरिए जियो मेरी बेदन हर गुरु पूरा जाने हाँ रह ना सका बिन नाम वखाने मैं औखद मंत्र दी जय गुरपूरे मैं हर हर नाम उधरिए जियो हम चात्रिक दीन सतगुर शरणाई हर हर नाम बूंद मुख पाई हर जल निद हम जल